0: South Australia, ready to give you expert support that reflects your needs. Need a first home loan, investment, SMSF, personal or construction loan, or even car and business lending. Jags works with over 35 plus lenders, so you get more choice, more flexibility, more care, and more local support. Whether you're buying, refinancing, or need help finding the right loan, Jags is your trusted part, guiding you with clarity, honesty, and personal attention every step of the way. Call or email Jags Lakhani today for a free consultation. That's 0451956659 or visit mortgagechoice.com.au/jags.lakhani. Unlock the right way forward.
1: A proud sponsor of 103.15 EBIFM.
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे यादों की बारात सिर्फ और सिर्फ 5 ABI 103.1 पर आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ। आज का प्रोग्राम थोड़ा अलग है। आज हम सिर्फ गाना नहीं सुनेंगे बल्कि जानेंगे कि म्यूजिक हमारे दिल दिमाग और जज्बातों पर कितना गहरा असर छोड़ देता है। कभी किसी गाने ने आपको बचपन की याद दिलाई है? कभी कोई पुराने नगमे सुनकर आंखों में आंसू आए हैं? या सिर्फ एक धुन ने पूरा दिन आपके चेहरे पर मुस्कान लाई है? ये है म्यूजिक की असली ताकत। मैं कोई मेडिकल या थेरेप्यूटिकल सलाह नहीं दे रही, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रिसर्च हमें म्यूजिक और मेंटल वेलबींग के बारे में क्या बताती है और कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में म्यूजिक का सहारा लेकर थोड़ा सुकून पा सकते हैं। दोस्तों, म्यूजिक में इस तरीके की ताकत है जो सुनकर हम कुछ ही मिनटों में अपना मूड बदल सकती है। जब हम खुश होते हैं तो हमें डांसिंग नंबर सुनने का मन करता है, जब उदास होते हैं दिल टूट जाता है तो पुराने नगमे की तरफ खींचे चले जाते हैं। दरअसल म्यूजिक सिर्फ हमारे कानों तक ही नहीं पहुंचता, बल्कि हमारे माइंड, बॉडी और सोल तीनों को जोड़े रखने का काम करता है। जब हम अपनी पसंदीदा धुन सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और सुकून मिल जाता है। रिसर्च ये भी कहती है कि धीमी और शांत धुने हमें रिलैक्स करने में मदद करती है, जबकि तेज और उत्साह से भरी म्यूजिक हमारी एनर्जी और मोटिवेशन को बदल सकती है। इसलिए म्यूजिक सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि हमारे जज्बातों के साथ भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले गीत के साथ। आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राग अहिर भैरव से, जिसे मॉर्निंग राग भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार इस राग को सुबह सुनना जरूरी है। ये आपका मन शांत करता है, आपको बहुत पॉजिटिविटी देता है, आपका फोकस भी बढ़ाता है। तो चलिए सुनते हैं ये अगला नगमा, अलबेला सजन आयोरी, मूवी हम दिल दे चुकी सनम का गीत है। ओनली ऑन 5 EBR पर सुनेंगे आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

चलिए दोस्तों, आप सुन रहे 5 BBI 103.1 पर आकाशवाणी एडिलेड, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं हम म्यूजिक की। एक और खूबसूरत बात म्यूजिक की ये है, कभी आपने नोटिस किया है कि कई बार हमें किसी गाने की भाषा समझ नहीं आती, फिर भी वो गाना हमारे दिल को छू जाता है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हम शब्दों से पहले उसके सुरों और उसके एहसास से जुड़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, वो सीधा दिल से बात करता है। म्यूजिक दुनिया के हर कोने में लोगों को जोड़ता है, चाहे हिंदी हो, पंजाबी, तमिल, बंगाली, इंग्लिश हो या कोरियन। अगर दिल सुरों को छू गए तो भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगला राग और अगला गीत राग यमन से इंस्पायर्ड है। अब बात करते हैं राग यमन की। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक लोकप्रिय शाम का रंग है, जो प्रेम, सुकून और इमोशनल बैलेंस का एहसास जगाता है। ये गीत लिया है फिल्म दो पत्ती से। सुनते हैं रांझण, ओनली ऑन 5 EBI पर आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

0: Asian fusion and authentic Indian. With a relaxing seating arrangement for dine-in and takeaway options at our two locations, Mother India Kitchen, Port Road, Alberton 08711-26878 and Cinnamon Curry, Findon Road, Woodville South 08708032001. You can contact for your private or official functions. We are proudly announced that Mother India Kitchen and Cinnamon Curry are the sponsors of this program.
1: Seeking a genuine assortment of spices and authentic Desi products? If so, a visit to Royal India Groceries is indispensable. Transporting you to the heart of India, it offers an exploration into Desi culture. Situated on Marion Road in South Plympton, Royal India Groceries welcomes visitors 7 days a week. For any queries or further information, please reach out on 08837100051.
2: Hey दोस्तों, आप सुन रहे हैं 5EBI पर आकाशवाणी एडलेड, यादों की बारात में हम बात कर रहे हैं म्यूजिक की। दोस्तों, म्यूजिक सिर्फ सुनने की चीज नहीं, ये क्रिएटिविटी का एक बहुत ही खूबसूरत रूप है। कोई अपने जज्बात को लिरिक्स में लिखता है, कोई उन्हें धुन में पिरोता है, कोई गाता है और कोई सुनकर अपना एहसास जाहिर करता है। हर कलाकार अपने दिल की बात एक क्रिएटिव तरीके से दुनिया तक पहुंचाता है। बहुत बार हम अपनी फीलिंग किसी से कह नहीं सकते, लेकिन एक गाना वो सब कुछ कह देता है जो हम कभी बोल नहीं पाए। जब दिल टूटता है एक अलग गाना याद आता है, जब घर में खुशी होती है तो एक अलग गीत अपने आप होठों पर गाता चला जाता है। अगर आप बॉलीवुड के पुराने गाने देखो तो हर गीत के पीछे एक कहानी है। कहानी मोहब्बत की है, कहानी जुदाई की, कहानी दोस्ती की, कहानी माँ के प्यार की और कहानी जो हमें जिंदगी जीना सिखाती है। तो चलिए, अब जो अगला राग मैंने आपके लिए लिया है बॉलीवुड सॉन्ग के जरिए, वो है राग पहाड़ी। राग पहाड़ी हिमालय और कश्मीर के लोगों की धुन है और इसी धुन से इंस्पायर्ड ये अगला गीत तेरे बिना, गुरु मूवी का एक गीत है, एआर रहमान की मधुर कंपोजिशन। सुनते हैं ओनली ऑन 5EBI पर आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।

चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे म्यूजिक और यादें। रिसर्च ये बताती है कि म्यूजिक हमारे यादों से बहुत गहरा रिश्ता रखता है। इसी वजह से जो डिमेंशिया के शिकार होते हैं वो कभी कभी अपने परिवारों में से कुछ लोगों के नाम भूल जाते हैं, लेकिन अपना मनपसंदीदा गीत सुनकर उसके बोल गुनगुनाने लगते हैं। कितनी अद्भुत बात है ना। म्यूजिक यादों को जगा सकता है, एहसासों को जिंदा कर सकता है और कई बार हमें अपने गुजरे हुए खूबसूरत लम्हों तक वापस ले जा सकता है। ये है म्यूजिक की ताकत। और दोस्तों, भारतीय राग और सुकून की बात करें तो हमारे भारत में सदियों से माना गया है कि हर राग का अपना एक समय और अपना एक भाव होता है। सुबह का राग, शाम का राग और हर राग अपनी अलग भावना लेकर आता है। आज भी बहुत से कलाकार और रिसर्चर्स इस बात को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तरह रिलैक्सेशन और इमोशनल वेलबीइंग में किस तरीके से योगदान दे सकता है। चलिए, भारतीय राग को दर्शाता हुआ ये मधुर अगला गीत बंदिश बंडित सीरीज से लिया गया है, गरज गरज, और इसमें फ्यूजन भी किया गया है। सुनेंगे, एंजॉय करेंगे ओनली ऑन 5 VBI पर आपकी प्यारी रेडियो जॉकी निकिता के साथ।